0: करना और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालना जरूरी है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये पाकिस्तान की लंबे समय से चली आ रही नीतियों और लोगों के अधिकारों के उल्लंघन का परिणाम है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की अपील की। भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष 771 मिलियन डॉलर से अधिक का था। उससे पहले वर्ष ये 679 मिलियन डॉलर था। इसमें 13.5% से अधिक की वृद्धि हुई है। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। दो दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत वर्तमान में 7 स्थानों पर 8.78 गीगावाट की कुल क्षमता वाले 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों का संचालन कर रहा है। इसके अलावा 8000 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली 10 और रिएक्टर इकाइयां निर्माणाधीन है। इनमें दबाव वाले भारी पानी के रिएक्टर, उबलते पानी वाले रिएक्टर और हल्के पानी वाले रिएक्टर शामिल है। देश मुख्य रूप से दबाव वाले भारी पानी के रिएक्टरों को चलाने और परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन का उपयोग कर रहा है। सरकार ने कहा है कि भारत ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और स्वच्छ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का लगातार विस्तार कर रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने कल रात फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए मिकेल ओयरज़ाबाल ने 22वें मिनट में पेनल्टी पर पहला गोल किया। इसके बाद 58वें मिनट में पेड्रो पोरो ने दूसरा गोल दागा। अब फाइनल में स्पेन का मुकाबला आज अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। वहीं क्रिकेट में कल भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45वें ओवर में 4 विकेट खोकर 262 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Subhadra Ramachandran. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, has come into force. Simultaneously, the Agreement on Social Security, also referred to as the Double Contribution Convention, DCC, also comes into effect today, reinforcing the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. The landmark deal grants Indian exports zero duty access to 99% of tariff lines in the UK market. Briefing media in New Delhi, Commerce Secretary Rajesh Agarwal described the CETA as a defining milestone in India's trade journey.
2: This is one of first FTA of its kind, which establishes a future-oriented economic architecture between the two major economies of the world. This is also one of the most ambitious and aspirational FTAs of India, which we are operationalizing till date. Because of its wide sectoral coverage and deep reduction in both tariff and non-tariff barriers, while it also safeguards the India's sensitive sectors and areas like dairy, cereals, pulses, vegetables, gold and jewelry, smartphones, critical polymers, etc.
1: More from our correspondent.
3: This agreement has been designed as a people-centric agreement that delivers benefits across society. The simultaneous enforcement of the CETA and the DCC will open up significant new opportunities for India's export. Indian exporters will benefit from the complete elimination of UK tariff across several key sectors. Tariffs of up to 70% on processed food products, over 21% on marine products, around 18% on engineering goods and auto components, up to 16% on leather and footwear products, around 12% on textiles and clothing will be reduced to zero. This will significantly enhance the competitiveness of Indian exporters in the

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: உண்டு. நாளை மறுநாள் 18ஆம் தேதியன்று, அதாவது 18ஆம் தேதியன்று தமிழ்நாட்டின் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளை ஒட்டியுள்ள மாவட்டங்களின் ஓரிரு இடங்களில் மிதமான மழை பொழிவு இருக்கக்கூடும். தமிழ்நாட்டின் மற்ற இடங்கள் புதுச்சேரி காரைக்கால் பகுதிகளில் லேசான மழைக்கு வாய்ப்புண்டு. 19ஆம் தேதியன்றும் 20ஆம் தேதியன்றும் தமிழ்நாடு புதுச்சேரி காரைக்கால் பகுதிகளின் ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும். 21ஆம் தேதியன்று மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளை ஒட்டியுள்ள மாவட்டங்களின் ஓரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். தமிழ்நாட்டின் மற்ற இடங்கள் புதுச்சேரி காரைக்கால் பகுதிகளில் லேசான மழைக்கு வாய்ப்புண்டு. திருப்பத்தூர், வேலூர், ராணிப்பேட்டை, கள்ளக்குறிச்சி, திருவண்ணாமலை, காஞ்சிபுரம், கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, சேலம், நாமக்கல், கரூர், ஈரோடு, திருச்சிராப்பள்ளி, அரியலூர், பெரம்பலூர், சிவகங்கை, விருதுநகர், திண்டுக்கல், மதுரை மாவட்டங்களின் ஓரிரு இடங்களில் இன்றும் நாளையும் வெப்பம் மிகுந்திருக்கக்கூடும். நாளை மறுநாள் விருதுநகர், சிவகங்கை, மதுரை, திண்டுக்கல், கரூர், நாமக்கல், ஈரோடு மாவட்டங்களில் வெப்பம் மிகுந்திருக்கும் வாய்ப்புண்டு. வெப்ப வேறுபாடு பற்றிய எச்சரிக்கை. இன்று அதிகால வெப்பநிலை 2 முதல் 4 டிகிரி செல்சியஸ் அதிகரித்து காணப்படக்கூடும். நாளையும் நாளை மறுநாளும் 2 முதல் 4 டிகிரி செல்சியஸ் சில இடங்களில் அதிகரிக்கும் வாய்ப்புண்டு. 18ஆம் தேதியன்றும் 19ஆம் தேதியன்றும் குறிப்பிடத்தகுந்த மாறுதல் ஏதும் இராது. சென்னைக்கும் அதன் சுற்றுப்புறங்களுக்குமான வானிலை முன்னறிவிப்பு, வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். வெப்பநிலை அதிகளவு 39 முதல் 40 டிகிரி செல்சியஸ் ஆகும். குறைந்த அளவு 28 முதல் 29 டிகிரி செல்சியஸ் ஆகவும் இருக்கக்கூடும். வெப்பம் மிகுந்திருக்கும். நாளை அதிகால வெப்பநிலை 38 முதல் 39 டிகிரி செல்சியஸ் ஆகும். குறைந்த அளவு வெப்பநிலை 28 முதல் 29 டிகிரி செல்சியஸ் ஆகவும் இருக்கக்கூடும். கொடைக்கானலில் அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். சில இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும். வெப்பநிலை அதிகளவு 24 டிகிரி செல்சியஸ் ஆகும். குறைந்த அளவு 12 டிகிரி செல்சியஸ் ஆகவும் இருக்கக்கூடும். கன்னியாகுமரியில் பதிவான அதிகளவு வெப்பநிலை 34.4 டிகிரி செல்சியஸ், குறைந்த அளவு வெப்பநிலை 25.9 டிகிரி செல்சியஸ். மீனவர்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு. இன்று தமிழ்நாட்டின் கடலோர பகுதிகள், மன்னார் வளைகுடா, குமரி
1: भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक व्यापार और आर्थिक समझौता आज से लागू हो गया है। इस ऐतिहासिक समझौते से भारत की 99% निर्यातित वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजारों में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ यह समझौता देश की आर्थिक कूटनीति में एक नया अध्याय है। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्रों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भागीदारी भी मजबूत होगी। इस समझौते के तहत प्रोसेस्ड फूड पर पहले लगने वाला 70% शुल्क, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक का शुल्क अब शून्य हो गया है। इससे किसान उत्पादक संगठनों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में ग्रामीण रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज से लागू हुआ व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। श्री मोदी ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत के वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रसायन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, किसानों और निर्माताओं के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये समझौता एक ऐतिहासिक कदम है। रक्षा मंत्री ने कहा कि ये समझौता भारत की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री जोशी ने कहा कि ये समझौता देश के आर्थिक हितों को मजबूत और किसानों तथा कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करेगा। उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया है। फिक्की के महासचिव अनंत स्वरूप ने कहा कि यह समझौता वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी बढ़ाने और नवाचार आधारित विकास को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। वहीं ब्रिटेन के उप उच्चायुक्त स्टीव हिकलिंग और विदेश व्यापार महानिदेशक

0: चालीस संयुक्त निदेशक डॉक्टर राहुल सिंह ने आज अहमदाबाद के सानंद में स्थित इनलैंड कंटेनर डिपो से समझौते के तहत पहली निर्यात खेप को रवाना किया। महाराष्ट्र में मुंबई के हावा शेवा और सांताक्रूज इलेक्ट्रॉनिक निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र से खेपों को रवाना किया गया। चेन्नई स्थित ब्रिटेन उप उच्चायोग में उप उच्चायुक्त डॉक्टर सुतापा चौधरी ने आज विदेश व्यापार महानिदेशालय के अधिकारियों के साथ भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के तहत पहली निर्यात खेप को रवाना किया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के उपलक्ष्य में तेलंगाना से ब्रिटेन के लिए निर्यात की पहली खेप को आज सुबह हैदराबाद से रवाना किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समाज के व्यापक हित में आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में सौश्रुतम 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार ने नई ऊर्जा के साथ आयुर्वेद और योग को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है। राष्ट्रपति ने युवाओं से आयुर्वेद के क्षेत्र में अपना योगदान देने का आग्रह किया।
1: यहाँ उपस्थित युवा विद्यार्थियों तथा प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत कर रहे शोधकर्ताओं से मैं ये कहना चाहूंगी कि आयुर्वेद का भविष्य आपके हाथों में है। आप सभी को जिज्ञासा, सत्यनिष्ठा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ व्यवहारिक शोध और अपने क्षेत्रों में श्रेष्ठ साक्ष्य निर्माण के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा।
0: भारत ने आगाह किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकाल पाने से लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद विश्व में चल रहे संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है। खेलों में स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डल्स में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi today said that the Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, and the Agreement on Social Security, which came into force today, is a significant moment in the partnership of India and United Kingdom. Mr. Modi made these remarks while sharing a social media post of Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. The Prime Minister added that the CETA will give fresh momentum to India's farmers, entrepreneurs and MSMEs, along with several vibrant sectors gaining stronger access to the UK market. On the Agreement on Social Security, or the Double Contribution Convention, coming into effect today, the Prime Minister said it will provide invaluable support to Indian professionals working temporarily in the UK and strengthen the competitiveness of Indian enterprises. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said the Comprehensive Economic and Trade Agreement will create unique opportunities for the businesses while further accelerating Prime Minister Narendra Modi's vision of a Viksit Bharat by 2047. In an article in an English daily, Mr. Goyal assured that the agreement safeguards sensitive farm products such as dairy, vegetables, apples, edible oils, oats, millets, cooking oils and others by placing them in the sensitive list, and added that no duty concessions have been granted to the UK on these items. President Draupadi Murmu has said the central government has established Ayurveda and Yoga on the global stage with renewed energy. She expressed satisfaction that efforts are being made to establish the ancient tradition of Ayurvedic surgery on scientific standards. Addressing the inaugural function of Sauschrutam 2026 in New Delhi today, the President said the Ministry of Ayush is working closely with the World Health Organization to strengthen the global standardization of Ayurvedic healthcare.
1: मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि आयुष मंत्रालय WHO के माध्यम से उनके साथ मिलकर आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा के वैश्विक मानकीकरण को मजबूत करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। स्टैंडर्डाइज्ड डॉक्यूमेंटेशन, डिजिटल हेल्थ इंटीग्रेशन और आधुनिक विज्ञान की अनुसंधान तकनीकों का सम्यक उपयोग करने से इस प्राणी की व्यापक वैश्विक स्वीकृति को बल मिलेगा।
2: Madhya Pradesh's first international flight service will begin from Indore today. Chief Minister Dr. Mohan Yadav will flag off the first direct flight from Indore to Abu Dhabi. The service is being launched under the state's Civil Aviation Policy 2025.

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है लोहारा यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे और अश्विन कोल्हे जी ने। बड़ा सुंदर विचार इन्होंने भेजा है, आइए सुनते हैं।
2: लिखते हैं, सपना वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते।
3: बहुत ही सुंदर विचार, आप सबको हमारा धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: सुहाना चौक ग्राम जसवाड़े से सूरज कुमार ढाकसे जी ने लिखा है,
3: अजीत जी और विमलेश जी आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप कैसे हैं जी? आशा करता हूँ कि आप सकुशल होंगे। मैं सूरज कुमार ढाकसे दोनों आँखों से नेत्रहीन हूँ। प्रतिदिन आपका कार्यक्रम रेडियो पर सुनता हूँ। आपके इस कार्यक्रम में एक से एक बढ़कर कहानियाँ, कविताएं और ये भी जानिए मैं दुर्लभ जानकारियाँ सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है। हमें दिनांक 22 जून 2026 का कार्यक्रम राग सिंदूरा बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।
2: सूरज कुमार ढाकसे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेशों के लिए श्रोताओ। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं कि उमंग एक शैक्षिक कार्यक्रम है,
2: इसलिए इसमें शिक्षा की बात तो होती ही है, लेकिन ये मनोरंजन से भी भरपूर होती है। इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के विकास की, और इस क्रम में हमने कल बात की थी मेसोपोटामिया की सभ्यता की मिट्टी की पटियाओं की, जिन्हें हम आज की पुस्तकों का आदि रूप कह सकते हैं।
3: जी, समय का पहिया चलता गया और मेसोपोटामिया की सभ्यता के लगभग 400 वर्षों के बाद एक और महान सभ्यता विकसित हुई। लेकिन वो कौन सी सभ्यता थी, ये विमलेश जी आपको बताना होगा। तो चलिए मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ।
2: जी,
3: वो सभ्यता उस नदी के किनारे विकसित हुई थी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है।
2: अजीत जी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, और मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहते हैं, कहीं ये मिस्र की सभ्यता तो नहीं?
3: बेशक, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तो चलिए अब करते हैं बात पुस्तकों की और जानते हैं प्राचीन मिस्र में लेखन कला का विकास कैसे हुआ और वे कैसे लिखते थे।
2: प्राचीन मिस्र के लोगों ने नील नदी के तट पर प्रचुरता से मिलने वाले पेपिरस के पौधों से लिखने की सामग्री बनाई।
3: पेपिरस के पौधों से लिखने की सामग्री बनाई, लेकिन कैसे?
2: ये एक अद्भुत तकनीक थी। पहले वे पेपिरस के पौधों की कटाई करते थे, फिर इसकी मोटी लेकिन मुलायम डंडियों का छिलका हटाकर उन्हें पतली पतली पट्टियों में काटा जाता था, फिर पट्टियों को पहले एक दिशा में बिछा दिया जाता था।
3: जी, और उसके बाद दूसरी परत को उन पर आड़ा बिछाया जाता था, फिर उन्हें भारी समतल पत्थरों या लकड़ी की भारी तख्तियों से दबाया जाता था।
2: इसमें एक मजेदार बात यह है कि पेपिरस के पौधों का प्राकृतिक रस ही गोंद का काम करता था, जिससे वे आपस में चिपक जाती थी। उन्हें सुखाने पर वे कागज की तरह बन जाती थी, फिर उन पर लिखा जाता था।
3: लेकिन वो लिखते कैसे थे?
2: लिखने के लिए वे सरकंडे का उपयोग करते थे। पेपिरस के द्वारा मिस्रवासियों ने स्क्रॉल्स भी बनाए जिनमें राजाज्ञाएं लिखी होती थीं। इसी स्क्रॉल शब्द का प्रयोग आज मोबाइल या कंप्यूटर के पर्दे को ऊपर नीचे करने में इस्तेमाल होता है।
3: उनका स्याही बनाने का तरीका भी बहुत दिलचस्प था।
2: जी,
3: वे घास और वनस्पतियों को जलाकर कालीख बनाते थे।
2: जी,
3: और उसमें गोंद मिलाते थे तो बन जाती थी काली स्याही।
2: जी,
3: वे लाल गेरू से लाल स्याही बनाते थे। ये प्राकृतिक लाल रंग की बेहद चिकनी मिट्टी होती है। बता दें श्रोताओं कि महत्वपूर्ण बातों को वे लाल रंग से लिखते थे और शेष बातों को काले रंग से। इससे दस्तावेज के महत्व का पता चलता था।
2: यही परंपरा आज भी चली आ रही है। पता है श्रोताओ, पेपिरस इतना उपयोगी था कि लगभग 2000 वर्षों तक मिस्र से भूमध्य सागर के आसपास के कई देशों को निर्यात करता था। इसी पेपिरस से पेपर शब्द निकला, और पेपर को पेपिरस का वंशज कहा जा सकता है। पेपिरस के आने से पुस्तकों का वजन बहुत हल्का हो गया, जिससे उन्हें आसानी से लाया ले जाया जा सकता था।
3: विमलेश जी, तो ये बात हुई पेपिरस की।
2: जी,
3: अभी जानना चाहिए कि मिस्र के लोगों ने पेपिरस पर क्या लिखा। क्या इससे मिस्र की सभ्यता के बारे में कोई जानकारी मिलती है?
2: जी अजीत जी, ये जानना बड़ा रोचक होगा। मिस्रवासियों ने पेपिरस पर धार्मिक ग्रंथ लिखे। पेपिरस पर राजाओं के वृत्तांत भी लिखे मिलते हैं
3: और फैरो राजाओं के आदेश भी। बता दें कि फैरो मिस्र के राजा हुआ करते थे।
2: जी,
3: पेपिरस पर प्राचीन मिस्र की चिकित्सा विधियां भी लिखी मिलती हैं, गणित साहित्य और कथाएं भी मिलती हैं। एक बात और साझा करना चाहता हूँ विमलेश जी, और वो ये कि प्राचीन मिस्र में लेखक बहुत सम्मानित समझे जाते थे और उन पर राजाओं की विशेष कृपा होती थी।
2: तो श्रोताओं, जिन दिनों में विश्व के अनेक देश पत्थरों और मिट्टियों की तख्तियों पर लिख रहे थे, उस समय मिस्र के लेखक पेपिरस के हल्के और लचीले पन्नों पर विज्ञान, चिकित्सा, व्यापार और साहित्य का विशाल ज्ञान संजो रहे थे।
3: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी किताबों के उद्भव और विकास की, लेकिन अभी और भी मंजिलें हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे अगले एपिसोड में।
2: जी,
3: अब सुनिए आज का प्रश्न। तो हमारा आज का प्रश्न है, पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी?
3: आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं
2: और हमारे ईमेल का पता भी नोट कर लीजिए, audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता।
3: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओं, हमारा आज का पहला कार्यक्रम है धरती का हरियाला उत्सव।
2: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में मानसून के बारे में बताते हुए प्रकाश डाला गया है कि मानसून की परिभाषा क्या है और वर्षा लाने में इसकी क्या भूमिका है।
3: धरती का हरियाला उत्सव।
4: नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। ऋतिक और रश्मि नाना नानी के घर गर्मी की छुट्टियों में गए हुए थे। नाना नानी दोनों ही शिक्षक रह चुके हैं। शाम को ऋतिक और रश्मि चौपाल जरूर जाते थे। बहुत गर्मी पड़ रही थी, सब गर्मी के प्रकोप से परेशान थे। देखते ही देखते चौपाल में चर्चा मानसून की होने लगी। ऋतिक और रश्मि जब घर पहुंचे तो उनके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, मानसून किसे कहते हैं? आइए सुनते हैं कि क्या बातें हो रही हैं ऋतिक, रश्मि और उनके नाना नानी के बीच।
5: नाना जी, नाना जी।
6: अरे ऋतिक, रश्मि भाई, आओ आओ आओ, कैसी रही चौपाल?
5: ठीक रही नाना जी, आज ना किसी ने गीत गाया और ना ही कोई नाटक दिखाया गया। आज तो बस यही बात हो रही थी कि
7: बहुत गर्मी पड़ रही है, कोई कह रहा था कि मानसून अब बस आने ही वाला है।
8: नाना जी, इतना तो मुझे भी पता है कि यह ग्रीष्म ऋतु के बाद आता है, लेकिन आप हमें और कुछ बताइए ना।
5: हाँ हाँ बताइए ना। माँ बताती हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे आप?
6: बेटा, मैं भूगोल पढ़ाता था।
7: ये लो, नानी जी भी आ गई।
9: अरे यहाँ क्या बातें हो रही हैं?
6: अरे कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, मैं तो बता रहा था इन्हें कि तुम बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाती हो।
9: हाँ वो तो है।
5: नानी, हम मानसून के बारे में जानना चाहते थे।
9: अच्छा, तो ये बात है। तो भाई चलो शुरुआत करते हैं तुम्हारे नाना जी से।
6: अच्छा चलो भाई चलो, मैं शुरू करता हूँ। देखो बच्चों, मानसून के बारे में जानने से पहले ये तो जान लें कि मानसून शब्द आया कहाँ से है।
5: कहाँ से आया है
6: भाई? शाब्दिक रूप से मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से आया है। किस शब्द से?
5: अरबी भाषा के मौसम शब्द से।
6: बहुत अच्छे बहुत अच्छे भाई। मौसम शब्द का अर्थ होता है ऋतु। एक बात और बता दूं कि इस शब्द का प्रयोग पूरी दुनिया में नहीं होता।
7: पूरी दुनिया में नहीं होता, तो फिर?
6: ये शब्द हिंद महासागर, अरब सागर, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण एशिया सहित आसपास के क्षेत्रों में मौसमी पवनों के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है।
5: आपने कहा ये मौसमी पवन है, क्या मानसून पवन या हवा है?
6: बहुत सुंदर प्रश्न बेटी, बहुत सुंदर प्रश्न। नहीं बेटी, मानसून सामान्य हवा या पवन नहीं है, ये एक ऋतु है जो विशेष मौसम

0: मौसमी हवाओं के कारण आती है, इसीलिए इसे मानसूनी हवा भी कहते हैं। इसी के कारण वर्षा ऋतु आती है।
1: नाना जी, मानसूनी पवन कैसे बनती है?
0: देखो बच्चों, अगर सरल शब्दों में कहें तो जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, एशियाई भूभाग गर्म होने लगता है, वहाँ एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है।
1: अच्छा नाना जी।
0: चूँकि पवन ऊंचे दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर बहती है, इसलिए ये महासागर से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बहती है। ये समुद्री पवन नमी लेकर आती है।
1: अच्छा।
0: जो गर्म भूभाग पर संघनित होती है और फिर उससे भारी वर्षा होती है।
1: अब समझ में आया। नाना जी, मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि भारत में मानसून आने ही वाला है, इसका क्या मतलब हुआ?
0: देखो भाई, यदि भारत की बात करें तो मानसून यानी मानसूनी हवाएं भारत के दक्षिणी हिस्से से प्रवेश करती हैं, कुछ सप्ताहों में उत्तर की तरफ बढ़ती हैं और जुलाई के महीने तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल जाती हैं।
2: और बच्चों, भारत में मानसून सबसे पहले केरल में आता है।
0: हाँ।
2: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की लगभग 60-70% खेती मानसून पर ही निर्भर करती है।
0: बिल्कुल।
2: और हाँ, हमारी भारतीय परंपरा में 6 ऋतुएं मानी जाती हैं, जिन्हें षड ऋतु कहा गया है।
1: अच्छा।
2: वर्षा ऋतु का प्रभाव सभी ऋतुओं पर पड़ता है। अच्छा मानसून यानी अच्छी फसल, और अच्छी फसल यानी
1: अच्छी अर्थव्यवस्था।
2: हाँ।
0: बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। तुम्हें पता है, वर्षा का हमारी भारतीय संस्कृति पर भी बहुत गहरा प्रभाव है। ये सिर्फ बारिश का मौसम ही नहीं है, हमारी कला, साहित्य, त्योहारों और संस्कृति का भी आधार है।
1: वो कैसे?
2: वो ऐसे कि महाकवि कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है मेघदूत। कहा जाता है कि इस महाकाव्य में बादलों और वर्षा ऋतु का सबसे सुंदर चित्रण है। अगर आधुनिक कविताएं कहें तो फिर सुमित्रा नंदन पंत, निराला और महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी मानसून यानी वर्षा ऋतु की सुंदरता के बारे में बहुत कुछ और बहुत सुंदर लिखा है।
0: वही, इसे सावन और भादों का नाम भी दिया गया है। और हाँ, यदि संगीत की बात करें तो हमारे राग जैसे मेघ मल्हार, मिया मल्हार, गौड़ मल्हार और राग देश विशेष रूप से वर्षा ऋतु के लिए ही तो रचे गए हैं। समझ गए?
1: जी नाना जी। और हमें मानसून के बारे में जानकारी भी मिल गई।
3: हाँ हाँ, पूरी जानकारी मिल गई।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम धरती का हरियाला उत्सव, और आइए अब सुनते हैं हमारा अंतिम कार्यक्रम। शीर्षक है स्वामी विवेकानंद।
5: इस कार्यक्रम में भारत के महान संत, तपस्वी, विचारक और चिंतक स्वामी विवेकानंद के जीवन और भारतीय दर्शन को पश्चिमी देशों में परिचित कराने की उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का सविस्तार उल्लेख किया गया है।

स्वामी विवेकानंद भारत के महान संतों में से एक हैं। वे भारतीय संस्कृति के गौरवशाली प्रतीक एवं महान व्याख्याता माने जाते हैं। उन्होंने देश विदेश की यात्राएं की और भारतीय परंपराओं को गौरवान्वित किया। विश्व कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर का कहना है, यदि आप भारत को समझना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद का अध्ययन कीजिए। स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में 12 जनवरी 1863 को हुआ। इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था।

0: नरेंद्र नाथ का पालन पोषण खुशहाली में हुआ। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट में बड़े वकील थे। वे नए विचारों के व्यक्ति थे। नरेंद्र नाथ की माता जी पुराने विचारों की धार्मिक महिला थीं। उनका अधिकांश समय पूजा पाठ में व्यतीत होता। वे नरेंद्र नाथ को रामायण और महाभारत के किस्से कहानियां सुनातीं। अतः नरेंद्र नाथ को अपने माता पिता से नए और पुराने विचारों का समन्वय मिला। नरेंद्र बचपन से ही बहुत नटखट थे। उनकी शरारतों के कारण सभी तंग रहते। एक दिन की बात है, नरेंद्र कोई शरारत करके भाग खड़े हुए। उनकी बहन उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ी। नरेंद्र ने तुरंत नाली में उतरकर अपने शरीर पर कीचड़ लपेट ली और बोले, अब पकड़ो मुझे। कीचड़ में लिपटे भाई को देखकर बहन अपना समूह लेकर लौट गई। नरेंद्र थे तो नटखट स्वभाव के, परंतु उनके हृदय में धर्म के प्रति आदर एवं श्रद्धा का भाव था। वे अपनी मां के पास घंटों बैठे पुराणों की कथा बड़े चाव से सुनते और उन्हें याद रखते। एक दिन की बात है, नरेंद्र उस समय 8 वर्ष के थे। अपने कुछ साथियों के साथ शहर में लगा मेला देखने गए। वहां उन्होंने बहुत आकर्षक वस्तुएं देखी। उन्होंने उत्सुकता से मेले की सभी दुकानें देखी। अंत में उन्होंने मिट्टी का एक शिवलिंग खरीदने का निश्चय किया। शिवलिंग खरीदने के बाद नरेंद्र नाथ के पास केवल 4 आने पैसे बचे। वे अभी सोच ही रहे थे कि इन पैसों का क्या खरीदा जाए कि तभी
1: अरे, ये तो किसी के रोने की आवाज है। कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है? देखूं तो ये आवाज कहां से आ रही है? ओ, ये तो एक बच्चा है। पता नहीं क्यों रो रहा है। चलकर इसी से पूछता हूँ, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो?
2: मेरा नाम राजू है। मैं यहाँ मेला देखने आया था। मुझे माँ ने मेले में खर्चने के लिए 4 आने पैसे दिए थे। पता नहीं वो पैसे कहाँ खो गए। जब माँ को पता चलेगा तो वो मुझे बहुत मारेगी। मैं कहाँ से लाऊं वो पैसे?
1: चुप हो जाओ, रो नहीं, मैं तुम्हें 4 आने पैसे देता हूँ। ये लो 4 आने, इन्हें अब संभाल कर अपने पास रख लो। अब माँ नहीं मारेगी तुम्हें। जाओ, खुशी खुशी घर जाओ।
2: अच्छा।
0: और इस तरह नरेंद्र ने अपने बचे हुए पैसे उस बच्चे को दे दिए। बच्चा बहुत खुश हुआ। मेले से जुड़ी एक और घटना है जिससे हमें पता चलता है कि नरेंद्र नाथ दीन दुखियों की सहायता करना अपना कर्तव्य समझते हैं। मेले से खरीदा शिवलिंग हाथ में लिए नरेंद्र नाथ घर की ओर चल दिए। वे अभी मेले से बाहर निकले ही थे कि उन्होंने देखा एक छोटा बालक दौड़ता हुआ सड़क की ओर आ रहा है। यदि उसे तुरंत बचाया नहीं गया तो गाड़ी के नीचे आ सकता है। नरेंद्र ने तुरंत हाथ में पकड़ी हुई शिवलिंग फेंकी और दौड़कर उस बच्चे को उठा लिया। तभी पास खड़े एक वृद्ध ने उससे कहा,
3: बेटा, तुम्हारा शिवलिंग तो टूट गया, अब तुम किसकी पूजा करोगे?
1: महाशय, कोई बात नहीं
3: है?
1: मुझे खुशी है कि मैंने इस बालक की जान बचाई। यही मेरा कर्तव्य है। मेरी सबसे बड़ी पूजा है।
0: नरेंद्र की माताजी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने बेटे को

0: गले से लगा लिया और कहा,
1: बेटे जीवन में सदैव ऐसे ही काम करना।
2: परंतु माँ, एक अपराध हो गया।
1: क्या?
2: मुझसे शिवलिंग टूट गया, ये तो शिव जी का अपमान हुआ ना।
1: बेटा नरेंद्र, तुमने ऐसा जानबूझकर तो किया नहीं।
2: नहीं।
1: और फिर मनुष्य और मनुष्यता की रक्षा ही सच्ची शिव भक्ति है। तुमने जो किया मेरे बच्चे, बिल्कुल ठीक किया।
2: माँ,
0: बाल्यकाल से ही नरेंद्रनाथ में महापुरुष के लक्षण स्पष्ट रूप से झलकने लगे। एक दिन की बात है, उनकी कक्षा में प्रधानाचार्य धर्म और दर्शन पर व्याख्यान दे रहे थे। उन्होंने देखा नरेंद्रनाथ अपनी आंखें बंद किए बैठे हैं। उन्होंने पूछा,
3: नरेंद्रनाथ तुम सो रहे हो?
4: जी नहीं प्रधानाचार्य जी, मैं कुछ सोच रहा था।
3: क्या सोच रहे हो तुम?
4: क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे?
3: हाँ बोलो नरेंद्र, क्या प्रश्न है तुम्हारा?
4: श्रीमान जी, क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं?
3: नरेंद्रनाथ, तुमने बहुत कठिन प्रश्न पूछा है। तुम इस प्रश्न के उत्तर की खोज में गंभीर भी हो, निराश ना हो। मैं तुम्हें ऐसे संत का नाम बताता हूं जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सही सही दे सकते हैं। यदि वास्तव में ईश्वर के दर्शन करना और सत्य की प्राप्ति ही तुम्हारा उद्देश्य है, तो तुम दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस के पास चले जाओ, वे ही तुम्हें ईश्वर के विषय में बता सकते हैं।
0: नरेंद्रनाथ को प्रधानाचार्य की बात जच गई और वे कुछ ही दिनों बाद दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर नरेंद्रनाथ ने अपना वही प्रश्न पूछा।
4: प्रणाम महात्मन।
5: जीते रहो पुत्र।
4: महात्मन, मैं आपसे अपने एक प्रश्न का उत्तर जानने आया हूं, क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे?
0: जब श्री रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्रनाथ को देखा तो वे उन्हें एकटक देखते ही रहे, जैसे वे बहुत पहले से ही एक दूसरे से परिचित हों। फिर वे नरेंद्र से बोले,
5: पूछो पुत्र, तुम क्या पूछना चाहते हो?
4: क्या आपने ईश्वर को देखा है?
5: हाँ पुत्र, मैंने ईश्वर को देखा है, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हें देख रहा हूं, तुमसे बात ही कर रहा हूं। यदि कोई सच्चे हृदय से ईश्वर की आराधना करे तो वो अवश्य भगवान को प्रत्यक्ष पा सकेगा। यदि तुम मेरे कहे अनुसार काम करो तो तुम्हें भी भगवान के दर्शन करा सकता हूं।
0: श्री रामकृष्ण परमहंस की बातों का नरेंद्रनाथ पर गहरा प्रभाव पड़ा और वे उनकी ओर आकर्षित होने लगे। रामकृष्ण परमहंस को तो पहली दृष्टि में ही नरेंद्र के प्रति अपार स्नेह उत्पन्न हो गया, और एक समय वो भी आया जब नरेंद्र श्री रामकृष्ण परमहंस के सच्चे शिष्य बन गए। उन्होंने उनके विचारों को अपनाया। श्री रामकृष्ण परमहंस की महासमाधि यानी उनके निधन के बाद नरेंद्र ही उनके उत्तराधिकारी बने। वे केवल नाम के ही उत्तराधिकारी नहीं बने, उनके काम के भी बने। अपने गुरु के नाम पर उन्होंने रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की, गुरु के विचारों का प्रसार किया, देश के दीन दुखियों के लिए शिक्षा तथा अन्य कल्याणकारी योजनाएं चलाईं। अब वे स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हो गए और उन्होंने देश के अनेक भागों का भ्रमण किया, लोगों के असहनीय दुख दर्द को अपनी आंखों से देखा और उन्हें मिटाने का भरसक प्रयत्न किया। स्वामी विवेकानंद ने अपने एक पत्र में लिखा था,
4: मुझे ईश्वर में विश्वास है, मुझे मनुष्य में विश्वास है, मुझे दीन दुखियों की सहायता में विश्वास है, और यही मेरा कर्तव्य भी है।
0: इसी दृढ़ निश्चय

को लेकर उन्होंने दक्षिण भारत में कन्याकुमारी नामक स्थान पर समुद्र के बीच स्थित एक शिला पर 2 दिन और 2 रात अटूट समाधि लगाई।

0: इसी समाधि के दौरान उनकी आंखों के सामने अतीत और वर्तमान भारत के चित्रों भर आए। जिस शिला पर स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई वो आज विवेकानंद स्मारक के रूप में प्रसिद्ध है। आज लाखों लोग कन्याकुमारी स्थित उस विवेकानंद स्मारक के दर्शन करने आते हैं। जन कल्याण की भावना विवेकानंद के रोम रोम में समा चुकी थी। इसी भावना को लेकर उन्होंने देश में पैदल भ्रमण किया। वो जहां भी जाते उनका आदर सत्कार होता और लोग उनके शिष्य बन जाते। इसी बीच अमरीकी शहर शिकागो में एक विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ। स्वामी जी ने इस सम्मेलन में जाने का फैसला किया। वे शिकागो पहुंचे। वहां उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस शिकागो सम्मेलन में उन्हें अपने विचार प्रकट करने का विधिवत निमंत्रण नहीं मिला था। फिर भी अपने एक मित्र की सहायता से उन्हें सम्मेलन में केवल 5 मिनट बोलने का समय दिया गया, जिसमें वे अपने विचारों को सभा के सामने रख सकते थे। स्वामी जी ने अपने भाषण में कहा,
1: मेरे अमरीकी भाइयों और बहनों, मुझे अपने देश भारत पर, अपने देश की संस्कृति पर और अपने धर्म पर गर्व है। ये वही देश है जिसने संसार के पीड़ितों की, दुखियों की रक्षा की है। सभी भारतवासियों को सर्वधर्म संभाव की शिक्षा दी है। मुझे ऐसे राष्ट्र का नागरिक होने का गौरव प्राप्त है जिसने विश्व के सब धर्मों और राष्ट्रों के शरणार्थियों को शरण दी है। इस धरती पर समय समय पर अत्याचार होते रहे हैं, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग पीड़ित किए गए हैं। धर्म का अर्थ है अशांति और द्वेष को पूरी तरह दूर करना। हमारा कर्तव्य है कि अपने धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए दूसरे धर्मों को नीचा ना कहें। सभी धर्म एक समान है, सभी धर्मों का आदर करना हमारा कर्तव्य है।
0: स्वामी विवेकानंद का ये भाषण सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए और तालियों की गड़गड़ाहट से भवन गूंज उठा। उनके विचारों की सभी ने प्रशंसा की। इसके बाद पश्चिमी देशों में स्वामी जी के भाषणों का तांता लग गया। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उनके भाषणों की चर्चा सारे विश्व में होने लगी। उन्होंने सुसंस्कृत भारत की जो छवि विश्व के सामने प्रस्तुत की उससे भारतवासियों के मस्तक गर्व से उठ गए। और जब वे विदेश से भारत लौटे तो भारत की जनता ने उनका भावभीना स्वागत किया। स्वामी विवेकानंद को भारतीय होने का गर्व था। वे चाहते थे कि उनके देशवासी भी ऐसे ही हों, देश के लिए जिए, देश के लिए मरे। स्वामी जी में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। उनका सारा प्रेम भारत के प्रति था और भारत की सेवा में ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। आज भी उनके विचार उन्हें अमर बनाए हुए हैं।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद। इस कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।

की आस्था और विश्वास का जीवंत स्वरूप एक अनुपम महापर्व है, पूरी की विश्व विख्यात रथ यात्रा। प्रतिवर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को उड़ीसा के समुद्र तट पर बसे पवित्र नगर पुरी में श्रद्धा का ऐसा महासागर उमड़ पड़ता है जिसकी भव्यता शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। वर्ष भर भगवान मंदिर के गर्भगृह में भक्तों को दर्शन देते हैं, परंतु वर्ष में एक बार स्वयं भगवान अपने भक्तों के बीच आने के लिए आतुर होते हैं। यही है भगवान और

0: सनातन संस्कृति का गौरव और मानवता के प्रति भगवान श्री जगन्नाथ जी के प्रेम का अद्भुत प्रतीक रथ यात्रा। 12वीं शताब्दी में निर्मित श्री जगन्नाथ जी का ये मंदिर केवल उड़ीसा ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर है। अक्षय तृतीया के शुभ दिन से तीनों रथों के निर्माण का कार्य प्रारंभ होता है। प्रतिवर्ष नए रथ बनाए जाते हैं। सदियों से चली आ रही विधियों के अनुसार परंपरागत शिल्प कला में निपुण सैकड़ों कारीगर दिन रात परिश्रम करते हैं और आधुनिक मशीनों के युग में भी इन विशाल रथों का निर्माण परंपरागत तकनीकों से ही किया जाता है। तीनों में सबसे बड़े भगवान श्री जगन्नाथ के रथ का नाम है नंदी घोष। ये रथ 16 विशाल पहियों वाला है। पीले और लाल रंग के रेशमी कपड़े जरी आदि से सुंदर रूप से सजे इस रथ को गरुड़ ध्वज तथा कपित ध्वज भी कहा जाता है। भगवान बलभद्र का रथ है ताल ध्वज, जो 14 पहियों का है और हरे व लाल रंग के कपड़ों से सजाया जाता है। जबकि देवी सुभद्रा के रथ का नाम है देवदलन या दर्पदलन, जो 12 पहियों वाला सौम्य और आकर्षक रथ है। काले एवं लाल रंग के कपड़े इस रथ पर शोभायमान होते हैं। ये तीनों रथ केवल लकड़ी के बने ढांचे नहीं बल्कि चलते फिरते देवालय हैं। तीनों ठाकुरों को रथ यात्रा के दिन रथारूढ़ कराने से पहले श्री मंदिर के पुरोहित तीनों रथों की प्रतिष्ठा पूजा करते हैं। श्री बलभद्र जी, चक्रराज सुदर्शन, माता सुभद्रा और श्री जगन्नाथ जी को एक विशेष प्रक्रिया से श्री मंदिर के गर्भगृह से बाहर लाया जाता है, जिसे पोहंडी विजय कहा जाता है। और जब शंखनाद, घंट ध्वनि और लाखों श्रद्धालुओं के कंठों से एक साथ जय जगन्नाथ की गूंज उठती है तो पूरा वातावरण भक्ति से सराबोर हो उठता है। ऐसा लगता है मानो स्वयं ईश्वर अपने भक्तों के बीच उतर आने को आतुर हो। रथ यात्रा के विषय में मूल तथ्य की जानकारी लेते हैं जगन्नाथ संस्कृति के जानकार डॉक्टर शांतनु कुमार रथ से।
1: महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा सारे विश्व में अनन्य है। ये इसीलिए अनन्य है कि यहाँ भक्त भगवान को नहीं स्वयं भगवान भक्तों को दर्शन करने के लिए अपना मंदिर छोड़कर बाहर आ रहे हैं। इसको कहा जाता है पतित पावन यात्रा। इसका मतलब ये है कि संसार में आकर माया और संस्कार बस मनुष्य जो पतित हो जाता है, इन पतितों मनुष्यों को पावन करने के लिए महाप्रभु स्वयं ये यात्रा रचते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रथे तो वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इसका अर्थ ये हुआ कि रथ पर आरूढ़ महाप्रभु को दर्शन करने से मनुष्य को अपने अंदर विराजमान आत्मा का अनुभव हो जाता है। ये अनुभव ही मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कराता है। रथ यात्रा के सारे क्षण ऐसा हो जाता है कि यह भक्त और भगवान में कोई अंतर ही नहीं रहता। ये ऐसे एक बिंदु है जहाँ दोनों समाहित हो जाते हैं। धर्म, जात, वर्ण, संप्रदाय विचार से ऊपर उठकर महाप्रभु जगन्नाथ सारे विश्व मानव को प्रेम करने का जो संदेश देते हैं, यही इस यात्रा का महत्व है। महाप्रभु कहते हैं कि मैं सभी को प्रेम करता हूँ, तुम भी करो। महाप्रभु का यह संदेश शत्रुभाव से सड़ता हुआ सारे विश्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक भी है।
0: अपने अपने रथों पर जब तीनों ठाकुर विराजमान हो जाते हैं तब होता है रथ यात्रा का एक अत्यंत प्रेरणादायक अनुष्ठान, जिसे छेरा पोहरा कहते हैं। छेरा पोहरा विधि के पीछे के संदेश के बारे में अधिक जानकारी लेते हैं रथ यात्रा के भाष्यकार श्री मोहन मजीठिया से।
2: दो शब्दों को मिलाकर छेरा पोहरा नामकरण हुआ है। छेरा का अर्थ है चंदन का गाढ़ा घोल और पोहरा का अर्थ है झाड़ू से साफ करना। ये एक विशेष नीति है जिसके लिए महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के आद्य सेवक माने जाने वाले पुरी के गजपति महाराजा को सौभाग्य प्राप्त है। महाप्रभु श्री जगन्नाथ, श्री बलभद्र और माता सुभद्रा के साथ सुदर्शन और सभी पार्श्व देवी देवता जब रथों पर विराजमान हो जाते हैं तब गजपति महाराजा के पास संदेशा भेजा जाता है। महाराजा राजकीय वेशभूषा में एक स्वतंत्र रूप से बनी पालकी में बैठकर प्रभु की सेवा में उपस्थित होते हैं। रथारूढ़ ठाकुरों के दर्शन, पूजा, आरती के साथ साथ सोने की मुठ वाली झाड़ू से रथों की सफाई करते हैं। उसके बाद चंदन मिश्रित जल का सिंचन कर महाराजा अपनी छेरा पोहरा की नीति संपन्न करते हैं। राजा और प्रजा के बीच के संबंध तथा धर्म के प्रति राज परिवार के

0: समर्पण भाव को दर्शाती ये परंपरा प्रतीक है भक्ति का, विनम्रता का, समानता का, जहां राजा अपने पद प्रतिष्ठा के अहंकार को त्याग कर सेवक बन जाते हैं, क्योंकि जो जगत के नाथ हैं, जो जगत के सम्राट हैं, उनके आगे राजा हो या सामान्य व्यक्ति, सभी एक बराबर हैं, सभी उन्हीं के सेवक हैं।
1: हरि ओम तत्सत् श्री श्री जगन्नाथ,
2: हरि ओम तत्सत् श्री श्री जगन्नाथ।
3: जगन्नाथ संस्कृति में गोवर्

0: जगन्नाथ संस्कृति में गोवर्धन मठ की विशेष भूमिका के बारे में बता रहे हैं गोवर्धन पीठ की आदित्य वाहिनी के प्रमुख श्री मातृ प्रसाद मिश्र।
1: आदि शंकराचार्य भगवान को ब्रह्मोद्धारक माना जाता है क्योंकि जगन्नाथ आदि चतुर्था विग्रह 164 साल भूमिगत थे। आदि शंकराचार्य भगवान शंकर दिग्विजय यात्रा में बृहद भारत को परिभ्राजक रूप में परिक्रमा करते हुए श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में पहुंचने के बाद उनको कपा बल के मालूम हुआ कि जगन्नाथ आदि चतुर्था विग्रह मंदिर के रत्न सिंहासन पर विराजमान नहीं है। उस समय आदि शंकराचार्य जी भगवान ने तत्कालिक राजा को आदेश देकर वनजाग पद्धति ने ब्रह्म को उद्धार किया। केवल ब्रह्म ही था क्योंकि दारू विग्रह भूमिगत होते हुए क्षय हो गए थे। उसी वजह से आदि शंकराचार्य भगवान पुनः जगन्नाथ आदि चतुर्था विग्रह को रूप प्रदान किया। वही जगत गुरु जी जो मंदिर के सारी रीति नीति परंपरा पूजा व्यवस्थावली सब कुछ तय किए, भारत से कोने कोने से ब्राह्मणों को बुला के 16 शासन प्रतिष्ठा किए, मुक्ति मंडप प्रतिष्ठा किए। पहले महाप्रसाद भक्तों के लिए उपलब्ध नहीं था, केवल सेवायत वर्गों के लिए उपलब्ध था। सारी आने वाले भक्तों के लिए भी इस कलयुग में सर्वश्रेष्ठ महाप्रसाद प्राप्त होना चाहिए, इसीलिए प्रसाद बढ़ाया, भोग मंडप प्रतिष्ठा किया। इतने कृत्य आप देख रहे हैं श्री जगन्नाथ मंदिर की व्यवस्था में। सारी कृत्यों का नियामक आदि शंकराचार्य भगवान है। उस समय से 2005 साल से वही स्वर्णिम इतिहास आज भी श्री मंदिर व्यवस्था में प्रचलित है। वर्तमान में वही गोवर्धन मठ पूरी पीठ के जो आचार्य पद में वरण होते हैं वही श्री मंदिर का सारी रीति नीति परंपरा धार्मिक कृतियों का नेतृत्व लेते हैं।
0: पूरी की रथ यात्रा प्रति वर्ष लाखों श्रद्धालुओं को देश विदेश से अपनी ओर आकर्षित करती। तीनों देवता गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं और वहां वे 7 दिनों तक विराजमान रहते हैं। इसके बाद प्रारंभ होती है वापस घर लौटने की यात्रा जिसे बाहुड़ा यात्रा कहते हैं। वापसी के मार्ग में भगवान अपनी मौसी माँ के मंदिर के आगे रुकते हैं जहाँ उन्हें भोग के रूप में उड़ीसा का प्रसिद्ध पारंपरिक व्यंजन पोड़ो पिठा अर्पित किया जाता है। यह परंपरा भगवान और उनके भक्तों के बीच पारिवारिक स्नेह का सुंदर उदाहरण है। फिर श्री मंदिर के बाहर रथों पर ही पारंपरिक रूप से ठाकुरों को स्वर्ण आभूषणों से सजाया जाता है। सोना वेश में भगवान के दर्शन करने के लिए भी देर रात तक भक्तों की लंबी कतार लगती है। श्री मंदिर में माता लक्ष्मी जी को छोड़कर अपने भाई बहन के साथ यात्रा पर निकले महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी जब वापस आकर मुख्य मंदिर में प्रवेश करने को होते हैं तब देवी लक्ष्मी क्रोध और अभिमान के कारण मंदिर के द्वार बंद कर देती हैं। इस अनोखी परंपरा के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं रथयात्रा भाष्यकार श्री प्रताप चंद्र त्रिपाठी।
2: जिस लीला में भगवान श्री जगन्नाथ अपनी मां के पास भेंट करने के लिए 9 दिन की यात्रा करते हैं, यात्रा उपरांत श्री मंदिर को पुनः लौटने वाली लीला की अंतिम लीला लीलाद्री विजय लीला रूप में जाना जाता है। इस लीला में सबसे पहले चक्रराज सुदर्शन, दाऊ बलदेव जी, बहन सुभद्रा माता जी एक एक होकर रथ से उतर कर सिंहासन की ओर यात्रा करते हैं, उसको गुटी पहंडी कहते हैं। भगवान जगन्नाथ जी जब जब मंदिर की सिंहासन से बाहर आते हैं तब भक्तों के साथ भेंट होने के लिए मन में उत्सुकता की भाव रहता है, जिस कारण प्रभु जी धाड़ी पहंड में आते हैं। अर्थात भाव यह है कि भक्तों को छोड़कर उनसे दूर हटने के लिए प्रभु जी मन नहीं करते हैं, इसलिए धीरे धीरे एक बाद एक अंदर जाते हैं। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि नीलाद्री विजय की यात्रा में बलदाऊ और सुभद्रा जी अंदर जाने उपरांत जब जगन्नाथ जी सिंहासन की ओर यात्रा शुरू करते हैं तो माँ महालक्ष्मी क्रोध अभिमान आदि भाव से मंदिर के द्वार को बंद कर देते हैं। माँ महालक्ष्मी जी को अपनी रथ यात्रा में साथ न लेने के कारण क्रोध में आकर ऐसी मनुष्यचित लीला करते हैं। दूसरी भगवान जगन्नाथ जी भी माँ महालक्ष्मी जी की गुस्सा को शांत करने के लिए अपने साथ वस्त्र अलंकार तथा रसगुल्ला भी लेकर जाते हैं और महालक्ष्मी जी को मनाते हैं और सिंहासन की ओर जाते हैं। परम ब्रह्म को यह मनुष्य लीला वास्तव में बड़ी अनोखी है, आनंदमय शास्त्रीय होने साथ साथ संसार कल्याण का कारण भी है।

0: रथ यात्रा में श्रद्धालुओं की निरापत्ता एवं श्रृंखलित रथ यात्रा के लिए की गई विधि व्यवस्था के बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं पुरी जिला के पुलिस अधीक्षक श्री प्रतीक सिंह।
1: सारे डिपार्टमेंट सबकी तरफ से मिलके एक मिलित प्रयास हमारी तरफ से किया जा रहा है। इस वर्ष अगर हम देखेंगे तो क्राउड मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने इवैक्यूएशन प्लान को सुदृढ़ किया है, पार्किंग व्यवस्था को बढ़ाया गया है, इन्फॉर्मेशन चैनल्स बढ़ाए हैं, पब्लिक के साथ हम जो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं टाइमली शेयर करना चाह रहे हैं। एम्बुलेंस मूवमेंट, फर्स्ट एड सेंटर्स का इफेक्टिवनेस, इस सब चीजों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। ओवरऑल कोऑर्डिनेशन इम्प्रूवमेंट करने के लिए सारी एजेंसी सारे डिपार्टमेंट मीटिंग करते हैं रेगुलरली, सब लोग मिलके एज अ टीम काम कर रहे हैं।
0: श्री मंदिर के मुख्य प्रशासक डॉक्टर अरविंद पाढ़ी रथ यात्रा के सुचारू संचालन के विषय में अधिक जानकारी दे रहे हैं।
2: स्पेशल एम्फेसिस इज बीइंग लेड ऑन एंश्योरिंग द स्मूथ कंडक्ट ऑफ रिचुअल्स, द नीति एज वी कॉल, एफिशिएंट क्राउड मैनेजमेंट, क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ केयर सर्विसेज, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड इफेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन एंड ऑल द कंसर्न डिपार्टमेंट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑल्सो मेनी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे आर वर्किंग इन क्लोज कोऑर्डिनेशन टू फैसिलिटेट ए वेरी सेफ, ऑर्डरली एंड स्पिरिचुअली फुलफिलिंग रथ यात्रा फॉर द डिवोटीज कमिंग फ्रॉम फार अक्रॉस द वर्ल्ड। द श्री जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सप्रेसेस इट्स ग्रेटिट्यूड टू ऑल द सेवायत्स ऑफ द श्री मंदिर, द ऑफिशियल्स, द वॉलंटियर्स एंड ऑल द स्टेक होल्डर्स फॉर देयर होल हार्टेड कोऑपरेशन एंड डेडिकेशन। विद द डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ महाप्रभु श्री जगन्नाथ, every effort is being made to ensure the successful and peaceful conduct of this year's chariot festival. We request all the devotees coming for this grand spectacle to kindly follow the instructions and the procedures laid out for them. There would be few traffic restrictions in the city and also there would be few specific guidelines relating to the movement of devotees in the Badadanda and the adjoining areas. So we request everyone to kindly follow the SOP issued by the administration.
0: पुरी की रथ यात्रा केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं, यह हमें सिखाती है कि ईश्वर स्वयं अपने भक्तों तक पहुंचते हैं। वे किसी एक वर्ग, किसी एक जाति, किसी एक समुदाय के नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के भगवान हैं। और इसीलिए भगवान जगन्नाथ को जगत का नाथ कहा जाता है। इसी शाश्वत संदेश के साथ हम महाप्रभु श्री जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जय श्री जगन्नाथ।
3: अभी आप महाप्रभु जगन्नाथ जी धाम ओडिशा के पावन क्षेत्र पुरी में कल यानी गुरुवार 16 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाली रथ यात्रा पर पूर्वावलोकन सुन रहे थे। आलेख एवं वाचन स्वर निशांत मजीठिया, प्रस्तुति सहयोग दिलीप कुमार नायक और राजीव कुमार महुंता, प्रस्तुतकर्ता विनय कुमार सामंतराय। आकाशवाणी के कटक केंद्र के सौजन्य से प्राप्त ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
4: ஆகாஷ்வாணி புதுச்சேரி, நேரம் 8:30 நிமிடம் 9:00.